0: यू सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: meetings, and then we saw the success of G20.
1: That was in one para.
0: That was in one para. And that was the kind of negotiations that he held. So let's talk about BRICS today, and who better to start this entire conclave than Mr. Amitabh Kant, the G20 Sherpa, who steered India's G20 presidency and helped shape the Delhi Declaration. Mr. Kant, really appreciate your time. G20 ke presidency aur BRICS ke presidency ke beech bahut sare developments hue hain world over. Usme kya kya badla hai aur kitna tough hai India ka ye moment BRICS ki presidency ko aap kaise dekhte
2: hain? You know, first and foremost, the BRICS summit is being held at a very challenging time. These are challenging times because there are conflicts everywhere. You've seen conflict in Europe, in the heart of Europe, for over 4.5 years. You've seen conflict in Middle East. You've seen conflict in West Asia. This is having a huge repercussion on global economies. Secondly, you're seeing a complete breakdown of global supply chains. So you're seeing protectionism, you're seeing muscular industrial policies across the world, and you're seeing very unilateral action by responsible nations, including the United States of America, on both tariffs as well as on security issues. So these are very, very challenging times. In the midst of these challenges, BRICS is a very important informal grouping. It's an important grouping both geopolitically and geoeconomically, because it accounts for almost 48 to 49% of the global population. It accounts for about 40% of the global GDP. And therefore, it has to play a major critical role. The important thing in while the BRICS summit is being held here in India is that India should be able to steer the course very steadily. And I'm saying steadily this is because it's important to ensure that, firstly, this group doesn't take any anti-West stance, number one. Number two, the group, as it has been expanded, also comprises of six additional members, amongst whom are Iran, Saudi Arabia, and UAE, which are on two differing sides, opposite sides of the conflict in West Asia. So to be able to arrive at a consensus and to be able to draft out a resolution which brings everybody on board is, to my mind, achievable but very challenging.
0: आपने बहुत अच्छे-अच्छे शब्द इस्तेमाल किए अभी, क्योंकि आपने बताया कि कितना tough है अभी situation, challenging times है. The world is standing right now in what many would see in a multipolar, fragmented, genuinely realigning in multiple ways. और उस सब के बीच एक तस्वीर अभी सैटरडे को उभरेगी जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, शी जिनपिंग होंगे और व्लादिमीर पुतिन होंगे. उस तस्वीर को देख करके कौन परेशान होगा? क्योंकि क्योंकि डॉक्टर एस जयशंकर ने कुछ दिन ही पहले बोला है अमिताभ कांत जी कि इंडिया इज नॉन वेस्टर्न बट नॉट एंटी वेस्ट. इंडिया का पोजीशन क्लियर है और उसी तरह से चाइना और रशिया का भी पोजीशन क्लियर है कि वो लोग एंटी वेस्ट हैं.
2: देखिए, इंडिया का जो स्टैंड रहा है शुरू थ्रू आउट वो ये रहा है कि हम मल्टी अलाइंड हैं. हम अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए, हमारा क्या नेशनल इंटरेस्ट है कि हम $4 trillion इकोनॉमी हैं, हम जब 2047 में जब विकसित भारत बनते हैं तो हमें $30+ trillion इकोनॉमी बनना है. उसके लिए हमें हमने कई काम किए हैं, जैसे कि फॉरेन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स यूरोप के साथ किया, यूके के साथ किया. हम यूनाइटेड स्टेट्स के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में काफ़ी आगे हैं और इसमें हमें सक्सेस मिलनी चाहिए. पर हमें इसके साथ साथ चाइना के साथ भी काम करना है, रशिया के साथ भी काम करना है, ये समझना आवश्यक है हमको कि देखिए इस समय जो हो रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया का जो फॉसिल फ्यूल है, जो तेल है, उसका एक तिहाई करीब यूनाइटेड स्टेट्स जो इम्पोर्ट करता था, एक ज़माने में इम्पोर्ट करता था, आज रशिया और सऊदी अरेबिया से ज़्यादा तेल प्रोड्यूस करता है और एक्सपोर्टिंग नेशन बन गया है, और वेनेजुएला को कंट्रोल कर लिया है उसने पूरा तेल, तेल की सप्लाई वेनेजुएला पे, और उसके और उसका जो लक्ष्य था कि ईरान की भी तेल सप्लाई को कंट्रोल करे, तो अगर वो कंट्रोल करता है तो एक तिहाई, दुनिया के एक तिहाई फॉसिल फ्यूल से ज़्यादा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कंट्रोल करेगा। दूसरी तरफ आप जब देखते हैं तो चाइना ने क्लीन टेक्नोलॉजी को पूरा मोनोपोलाइज करा है, और वो करीब दुनिया की जो बैटरीज है 95% क्लीन बैटरीज चाइना प्रोड्यूस करता है, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स करीब 85% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, टेस्ला अमेरिकन मैन्युफैक्चरर पर अभी के समय 85% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूनाइटेड चाइना प्रोड्यूस करता है। क्रिटिकल मिनरल्स में, क्रिटिकल मिनरल्स की प्रोसेसिंग में सारी टेक्नोलॉजी की मोनोपोली इस समय चाइना की है, और सोलर में फिर करीब 80% उसका कंट्रोल है, और विंड में करीब 77% उसका कंट्रोल है। तो आप जो देख रहे हैं सारी क्लीन टेक्नोलॉजीज पर चाइना का कंट्रोल है, और फॉसिल फ्यूल पर यूनाइटेड स्टेट्स का एक तिहाई कंट्रोल है। तो अगर इंडिया को आगे चल के विकसित भारत बनना है तो इंडिया को इस समय फॉसिल फ्यूल इम्पोर्ट की आवश्यकता है, क्योंकि अगर फॉसिल फ्यूल जो हम इम्पोर्ट करते हैं 180 बिलियन का, जब युद्ध होता है वेस्ट एशिया में तो वो बढ़ जाता है और से रुपी पर प्रेशर आता है और इकोनॉमी को इंपैक्ट करता है। पर आगे चल के हमें क्लीन टेक्नोलॉजीज में आगे बढ़ना है, इसलिए चाइना के साथ भी काम करना बहुत आवश्यक है, हमारे नेशनल इंटरेस्ट में आवश्यक है कि चाइना इन टेक्नोलॉजीज को वेपनाइज ना करे, चाइना इन टेक्नोलॉजीज को ब्रिक्स कंट्रीज को पास करे, चाइना अपने मार्केट को खोले, चाइना एक्सपोर्ट में विश्वास करता है, चाइना इंपोर्ट्स में विश्वास नहीं करता है, वो इंपोर्ट नहीं होने देता है। हमारे जो ड्रग मैन्युफैक्चरर्स हैं, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो एक्सपोर्ट चाइना को नहीं कर पाते, चाइना का जो मार्केट है वो नॉन टैरिफ बैरियर से भरा रहता है। तो ये एक ब्रिक्स समिट जो है उसमें क्लाइमेट, ट्रेड, कई डिस्कशंस होंगे, पर बायलैटरल डिस्कशंस में ये आवश्यक है करना कि हम चाइना को बताएं कि उनके जो मार्केट्स हैं वो क्लीन टेक्नोलॉजीज की टेक्नोलॉजी को बाकी ब्रिक्स कंट्रीज में पास करें, क्योंकि ये ग्लोबल साउथ टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन आवश्यक है।
0: क्योंकि आप चाइना की बात कर रहे हैं तो उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन अमिताभ कांत जी, थोड़ी देर पहले जेफरीज ने, एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक जेफरीज ने इंडिया न्यू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कह करके 6 हाई ग्रोथ सेक्टर्स की बात की है, जहां पर स्पेस, सेमीकंडक्टर्स, डेटा सेंटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर और एरोस्पेस हैं। ये उस वक्त चर्चा हो रही है जब भारत की अर्थव्यवस्था के जो जीडीपी नंबर्स आए हैं वो 7.8% पर है, उस पर बहुत सारी चर्चा हुई, बहुत सारे लोगों ने उस नंबर को चैलेंज भी किया। जब आप बोल रहे हैं चाइना मोनोपोलाइज नहीं करे, वहां पर जेफरीज का ये कहना कि इंडिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा है, ओपनिंग स्पेस टू प्राइवेट प्लेयर्स, टैक्स हॉलीडेज फॉर डेटा सेंटर्स, इंसेंटिव स्कीम्स फॉर सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सोलर, दिस इज व्हाट जेफरीज इज सेइंग।
2: सो देखिए, जेफरी बोले या ना बोले, मेरे विश्वास से इंडिया में दो महत्वपूर्ण चीजें हुई हैं। एक तो इस सरकार ने कई महत्वपूर्ण सेक्टर्स को पूरा खोला, पहले उन्होंने जियोस्पेशियल सेक्टर को खोला, वो पूरा कंट्रोल था, फिर ड्रोन सेक्टर को खोला, और मैं अभी देख रहा था कि आपके जो स्पॉन्सर्स हैं वो ड्रोन मैन्युफैक्चरर हैं, रैफेएमफी, तो ड्रोन सेक्टर को खोला, उसके बाद इन्होंने स्पेस सेक्टर को खोला, और चौथा जो सबसे बड़ा काम किया वो कि डिफेंस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए पूरा खोला। तो ये 4 सेक्टर्स जो पूरे खोले हैं, इससे प्राइवेट सेक्टर और स्टार्टअप्स को बहुत बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि पहले ये सारी की सारी चीज़ें कंट्रोल थी पब्लिक सेक्टर में, जिसमें कि प्रोडक्टिव एफिशिएंसी बहुत कम थी। एक दूसरी जो चीज़ हुई है कि हमने कटिंग एज टेक्नोलॉजी एरियाज में भारत गया, हम सेमी कंडक्टर्स में गए, पहले डिजाइन करते थे पर अब मैन्युफैक्चर में गए. सेमी कंडक्टर की जो PLI 1 थी बड़ी सक्सेसफुल रही, PLI 2 में गए. उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में गए, AI मिशन लॉन्च किया, क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन लॉन्च किया, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया. तो ये कटिंग एज एरियाज ऑफ ग्रोथ हैं जो आपको ग्रोथ आगे चल के देंगे. और ये इसलिए विकसित भारत के रास्ते में ये क्षेत्र आपको बहुत क्वांटम जंप देने वाला है इन चीजों में.
0: तो उसमें ब्रिक्स नेशंस का एरिया ऑफ कोऑपरेशन आप क्या देखते हैं?
2: देखिए
0: ये सब जो 6 सेक्टर्स हैं, जैसे जिसमें सोलर, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर्स भी है, साथ साथ स्पेस की बात हो रही है और डेटा सेंटर्स पर एम्फेसिस G20 में भी था, अभी भी हो रहा है.
2: देखिए ब्रिक्स के लिए 2-3 महत्वपूर्ण चीज है. एक तो जब भारत होस्ट कर रहा है इसमें इसको ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और क्लाइमेट पर फोकस करना चाहिए मेरे, और डेवलपमेंटल इश्यूज पर फोकस करना बहुत आवश्यक है. बहुत ज़्यादा अगर आप जियोपॉलिटिक्स में जाइएगा तो इसमें एंटी वेस्ट स्टैंस आने की काफ़ी चांसेस हैं, क्योंकि रशिया और चाइना का जो एम रहेगा कि उसको, एंड क्योंकि उनके लिए इस समय अमेरिकन एक्शन जो भी हुए हैं काफ़ी यूनिलैटरल हुए हैं. जैसे उन्होंने टैरिफ्स बढ़ाए देशों पे, और अभी जो सैंक्शंस लगाए ईरान पे, उससे इम्प्लिकेशन होता है, इन सैंक्शंस का बहुत इम्प्लिकेशन है चाइनीज इकोनॉमी और रशियन इकोनॉमी पे. तो ये यूनिलैटरल एक्शन. दूसरी चीज़ यूनाइटेड स्टेट्स ने जो किया कि पहले जो क्वाड का जो मूवमेंट बढ़ रहा था उसको काफ़ी कम फोकस पे, कम फोकस पे रखा है. इसलिए इंडिया को बहुत आवश्यक है मेरे विचार से जियोपॉलिटिकली फोकस करने के बदले हमें डेवलपमेंटल इश्यूज, ट्रेड इश्यूज, इन्वेस्टमेंट इश्यूज और क्लाइमेट इश्यूज पर ब्रिक्स में फोकस करना आवश्यक है. और इसलिए अगर ब्रिक्स नेशंस में जो कि ग्लोबल GDP का 40% अकाउंट करते हैं, इनमें ट्रेड बढ़ता है तो ये ग्लोबल साउथ के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो युद्ध हुआ मिडल ईस्ट में, जब ऑयल प्राइसेस बढ़े तो ग्लोबल साउथ की इकोनॉमीज को सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुआ है. दे आर द वंस हु हैव गॉट इंपैक्टेड, एंड दैट इज व्हाई द फोकस हैज टू बी ऑन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड ऑन इश्यूज ऑफ क्लाइमेट रादर देन ऑन जियोपॉलिटिक्स.
0: My question now would be with regards to what are the lessons from G20 that India can take forward in the BRICS? Because is India getting pulled in 2 different directions now?
2: Well, the key issue is the art of, you know, you've done 350 meetings, you'll do BRICS to great perfection as far as organization is concerned. There'll be great photo opportunity. But the end of the day, in multilateral negotiations, the key is to arrive at a consensus. Multilateralism is about arriving at a consensus. If you've not arrived at a consensus in the final document, the summit falls apart. That is critical for us to understand. And therefore, consensus building must be the hallmark of India's presidency. Whatever is the minimum language required for purposes of geopolitics, we should be able to. These are challenging times because of West Asia, because of opposite nations like Iran, Saudi Arabia, and UAE being a part of the G20. The G20 expansion has not yet fully matured, and therefore, it is absolutely necessary that we are able to convince them to arrive at some minimum language to be able to arrive at a consensus.
0: So is that, how tough do you think that would be? Because many are seeing this, you know, BRICS as an area which is being used by China to expand its own influence.
2: So the important thing is, that's why I keep saying that focus on many other issues. Focus on climate, focus on trade, focus on investment, focus on production.
0: Is that what you did during G20?
2: Many other issues. And yet we arrived at a full consensus on geopolitics. We were the G20 was, India was the first country, United Nations had failed, Security Council had failed, everyone had failed. It was only G7 had failed. It was only G20 which could arrive at a consensus on the political aspect issue. That was the first time that a full consensus para on Russia-Ukraine war was arrived at. And I think it's important that India is eventually able to arrive at a consensus on that as well. But, you know, the key thing in this is that we must understand the nature of geopolitics. Today, about 28% of the global economy is controlled by United States. United States account for 28% of the global GDP. It accounts for 50% of the market cap of the world. China is close to about 19% of the global GDP. But it's expanding in a range of new areas of growth. It has a complete control, monopolizing of clean technologies. And it is weaponizing them in a very big way. And therefore, it is necessary for the future for India to both work with the United States in its own national interest, to work with the United States. No country in the world has become rich without working with the United States. Post-World War II, Japan penetrated in its exports the United States, later Korea penetrated the United States, and for the last 3 decades, China has become rich on account of the United States, its ability to export and penetrate the American markets. And therefore, it'll be very, very difficult for India to grow into a $30+ trillion economy without a multi-aligned policy of working with the United States, the Europe, and China as well.
0: Isn't that what India is doing?
2: That's exactly what India is doing, and that must be the attempt. And that's why India must steady the course of BRICS. India must act like a matured, seasoned player who's on course, steadying the ship in very choppy waters. And these are very difficult and very challenging times. If anyone can do it, it's India which can do it. Only India can steady the course of the BRICS. It's gone to another extreme in the last 2-3 BRICS summits. It must steady the course now.
0: You know, your book is titled How India Scaled Mount G20, and then you have spoken about and written about the inside story of G20 presidency. So this is Mount BRICS now. The Strait of Hormuz challenge, the economy challenge. There are 2 ongoing conflicts. There's Russia, Ukraine, and on the other side as well. Given the landscape that you're looking at, is this mount bigger than, or taller than, or more difficult than Mount G20?
2: Well, G20 has G7 nations to bring them on par. It has the United States. It is a much more broader geopolitical grouping. It has many nations from the global south, but it has Russia, it has China, it has Turkey, it has Saudi Arabia, but it also has all the G7 and the United States. That's a far more complex, far more difficult, but a far more significant and a far more important grouping than anything else. G20 has these nations on board. So if you are able to get a consensus on G20, that's a major achievement for India, to my mind.
0: Okay. So let's try and sum up this conversation, Mr. Kant, because I know you have to head straight to the airport.
2: Yeah. So, you know, the many complexities that you've pointed out, there's one other big challenge which I think BRICS must discuss, and that is the challenge. While there are conflicts, there's breakdown of supply chain, there's also the emergence of artificial intelligence as a very key driver of global growth and prosperity. And this, to my mind, will be one of the biggest drivers of change in the coming years. There's a challenge of very rapid development of large language models in the United States, as demonstrated by Anthropic, and by OpenAI and the open source and open weight models, which are very close in terms of innovation to the American LLMs, are these open source, open weight models, but which are much, much more cheaper in their usage as far as tokens are concerned. And there's a massive contest on artificial intelligence going on right now.
0: Yes.
2: There has to be responsible use of AI. And that is an issue which needs to be discussed and debated in multilateral institutions.
0: So a consensus on AI because artificial intelligence certainly is the buzzword everywhere now. Given how the dynamics are playing out between various big tech companies, can big nations also give directions?
2: Well, you need a multilateral body, much like you have in the case of nuclear armaments and a global body. Innovation will always be ahead of regulations, but you need responsible AI. And that, to my mind, will be critical. So both in BRICS, it needs a discussion, and later in G20 and the United Nations, you need the formation of the body. But beyond this, in its own bilateral meeting with Xi Jinping, it's very important for India, because India needs to grow its trade. It's a one-way trade. There's very little exports we do. We do a very substantial amount of imports from China. It's very important to understand that China is weaponizing all its clean technologies. It's impossible to, they increase the price of cell battery, the cell technology, they decrease the price of the end batteries. It's impossible to manufacture in any other country. The monopolization is to such a high extent, they've created a virtual oligopoly in this sector. So it's very important to tell the Chinese to open up in some of these areas so that you are able to ensure that there are technology flows, that you are able to ensure that clean technology develops in other parts of the world, and that critical mineral processing is not monopolized by one country of the world.
0: So my final question, and this is to the G20 Sherpa, what will you be watching out for? Three things that you will be watching out for on 12th and 13th as India hosts the 18th BRICS Summit.
2: Well, first and foremost is that India must ensure that in terms of its language, the document must be fairly progressive, forward-looking, and yet not be anti-Western. Number two, it's important that we are able to resolve the differences despite the conflict in West Asia between Iran, UAE, and Saudi Arabia, which is highly complex, but India must play a key role in getting the right minimum language, the right minimum language to be able to resolve this. Thirdly, I think other than the BRICS summit, there'll be a lot of bilateral action. The Prime Minister will be meeting Putin and Xi Jinping, and the China-India play on issues of development, trade, technology is critical, and I see that there should be a movement forward as far as India-China relationship is concerned, which was moving smoothly till Galwan happened, and then we issued Press Note 3, and now it has been, we were defined beneficial ownership in Press Note 2 by saying that you can go up to 10% investment by Chinese, but it must be very, we need a movement forward. We need to advance this forward. It's much better to get Chinese technology and Chinese investment rather than allowing this imbalance of trade with China to continue and grow.
0: Thank you so much, Mr. Kant. Thank you for your time, ladies and gentlemen. Our big guest here, Amitabh Kant. Pleasure, sir.
1: Mr. Kant, I request you to please stay on the stage. Maharaj Shakil will please you as well for a token of appreciation here on the stage. Thank you very much, Mr. Amitabh Kant, for his views and wisdom, especially when it comes to already understanding the leadership with regard to hosting international events. Now, ladies and gentlemen,
3: and we have some news coming in. President Xi Jinping's arrival on Saturday noon. So that's the big update that's coming in as far as the BRICS summit is concerned. And on the sidelines of the BRICS summit is the bilateral that is expected to take place between India and China, as Xi Jinping will be coming to India for the BRICS summit. And a bilateral is also likely between Prime Minister Modi and President Xi Jinping. And what we're learning is that the Chinese president is likely to arrive in India on Saturday at around noon. And the meeting will be happening somewhere around the evening at 6 p.m. at Bharat Mandapam. An official announcement regarding President Xi Jinping's visit is likely today by the Ministry of Foreign Affairs in Beijing. So Prime Minister Modi and President Xi Jinping are likely to hold a bilateral meeting on the sidelines of the BRICS summit at the Bharat Mandapam on Saturday, which is the first day of the summit, September 12th.
4: Co-presented by Hint. Ek hint to dete. Powered by Siksha O Anusandhan University, empowering students for a brighter future.

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

0: जो सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: A new world order is taking shape. BRICS is at the center of it. As the world changes, India leads the conversation. Where does BRICS go from here? The future of BRICS, decoded by India Today's strongest voices. India Today Global BRICS Roundtable, 10th September. All through the day, only on India Today Global.

0: Can you hear me now?
1: Yes.
0: Great. So do you prefer if I call you sir or professor?
1: Anything.
0: Okay.
1: Whatever you're comfortable with.
0: Okay. Can I call you sir? My name's Luthando. I'm under ICCR here in India, in Delhi. I just had one question. I had two, but I'll just do one for now. My question was, is there any opportunity that the South African youth can look forward to when it comes to the BRICS investments to help curb the huge unemployment of youth in South Africa in the next couple of years? And, yeah.
1: Well, firstly, let me express our appreciation to ICCR for the opportunities they provide to our students and our youth. ICCR has been a solid partner of South Africa. I was a guest of ICCR a few years ago on the Visit India program. And I must say also a major focus of BRICS is on skills and capacity building amongst our youth. And you know, in 2023, under our chairship, we launched the BRICS Youth Platform. So I would suggest through the South African entity, you get involved because they have many meetings. They met here in India as well. That's one platform you can use. And civil BRICS, when civil society get together, by and large, it's youth. When you look at the demographic of India and the demographic of South Africa, it's almost identical. We have a very strong youthful population. And we have the same challenges. How do we provide opportunities for our young people so that they become productive and contribute meaningfully in terms of building our societies and building our country? So I think there are many lessons. One of the things I keep saying since my arrival in India, the energy of your youth. And I give this example. I was at a friend's house in Hyderabad, and we were talking about the youth. And he said, you know, there's an interesting development. Maybe 10, 20 years ago when families got together, friends got together, and the children were unemployed, they would say, can you find my son or a daughter a job? You know, he's unemployed. He says, today you'll hardly hear that because the youth themselves are going out and doing things. They are becoming creators of jobs today. And I think that's the kind of spirit we want to take from India into South Africa.
2: There's a very vibrant startups, you know.
1: Absolutely, you have second largest startup globally. And this is what advice I would like to give you as South African youth. This is where we can benefit in partnering with India. Many of the Indian youth will come and tell me, look, I'm working on this innovation. Can I find a partner in South Africa? So there's great opportunity, great opportunity.
2: Anyone else from South Africa? Okay, I think
3: all right.
2: You have addressed the questions, but thank you very much, High Commissioner, for giving us this opportunity and sharing all your thoughts. And we think that something concrete, something more tangible should come out from this BRICS BRICS summit.
1: Fully agreed. Thank you so much.
2: Thank you
1: for having me.
4: Professor Suklala, I request you to please stay on the stage, and requesting Pranay Upadhyay to share and hand over a token of our appreciation. And thank you for the warm relationship between South Africa and India, especially at a time like that. Thank you very much, sir. Thank you. A round of applause, ladies and gentlemen, for Professor Suklala, for his time, for his wisdom. And at a moment like this, remember that India is not a nation now simply in the background. We're a nation that has stakes in the game, in the changing global order. And that is why when India is now chairing the 18th BRICS Leaders Summit, this is the fourth time that we are chairing it, and we this time become the host after a year of concluding events in 350 meetings that have been organized across 25 cities of this country. India is being looked at now as an emerging economic superpower, which is taking the global south with it. And as South Africa has also had the G20 presidency, remember, Indian Prime Minister in 2023 had pushed forward for the African Union to be added into the G20. So that is the kind of effort that Indian government has been pushing in. And therefore, from what South Africa and India can do together, to the Indian voice, that shall use this opportunity to take that voice ahead. And therefore, without wasting any time, for the next session, that is Sangh Shakti Samvad, India's voice in the BRICS order, I'd like to invite on the stage the session moderators. Swetha Singh, our Senior Managing Editor, Aaj Tak Programming, Head of GNT. Maria Shakil, Managing Editor, India Today Television. Both of you ladies to please come on the stage, and of course to welcome the National Vice President of the BJP, Mr. Ram Madhav, on the stage. Mr. Madhav, sir, a round of applause, ladies and gentlemen, for someone who's possibly worked more in the background but has led to a lot of initiatives for the country.
3: Hello, welcome, namaskar. Ram Madhav ji, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट हैं नेशनल, बल्कि इसलिए भी क्योंकि एक फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट हैं. आपकी कई हुई बहुत सारी भविष्यवाणियां, जो मारिया के हाथों में किताब है, हम भविष्यवाणी इसलिए कह रहे हैं बिकॉज व्हाट ही सेड केम ट्रू इवेंचुअली एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग. सर, विद ब्रिक्स द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई वॉन्ट टू स्टार्ट विद इज, हम कहते हैं इंडिया फर्स्ट, सबसे पहले भारत, राष्ट्र प्रथम, और साथ में हम कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम. क्या ये विदेश नीति का एक विरोधाभास है या फिर एक ऐसी सीख जो पूरी दुनिया को सीखनी चाहिए?
5: देखिए, पहली बात तो हम सबको जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि हम एक नए प्रकार के विश्व में प्रवेश कर रहे हैं. वी आर गोइंग टू एंटर इनटू ए टोटली डिफरेंट वर्ल्ड. वो नया विश्व आज के वर्तमान के जो परमुटेशंस कॉम्बिनेशन हम देख रहे हैं, कोई G20 देख रहे हैं, कोई ब्रिक्स देख रहे हैं, कई SCO कह रहे हैं, इन सब से भिन्न होने वाला है. इनफैक्ट द वर्ल्ड टुडे मेनी पीपल फियर दैट इट इज हेडिंग टुवर्ड्स अ मेजर इकोनॉमिक रिसेशन, समथिंग दैट वी एक्सपीरियंस्ड इन से 1998, 2008-9, समथिंग लाइक दैट वी आर हेडिंग टुवर्ड्स. वो पूरा विश्व का चित्र बदलने वाला है. ऐसे में भारत एक ऐसा देश है जो दुनिया के विभिन्न प्रकार के इस समय जो गुट है, ग्रुप्स है, उन सबके साथ अच्छा संबंध रखता है. आपने वसुदेव कुटुंबकम की बात की है, एक कोई इसमें हम ब्रिक्स का हिस्सा होना और हमारे राष्ट्रहित की बात करने विरोधाभास नहीं है. हम केवल ब्रिक्स के नहीं है, हम G20 में भी है, हम शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के भी हिस्सा है. वी आर ऑल्सो ए पार्ट ऑफ वॉट इज नॉट एग्जैक्टली एन अलायंस बट एन अरेंजमेंट कॉल्ड क्वाड इन आवर इंडियन ओशन रीजन. वी आवरसेल्व्स हैव समथिंग कॉल्ड बिम्स्टेक विच वी ड्राइव. ये इसलिए है कि जो नया विश्व बनेगा उसमें आप कोई एक फिक्स्ड अरेंजमेंट के साथ चल नहीं पाएंगे. भारत ये समझता है, हमारा लीडरशिप ये समझता है, इसलिए अलग अलग प्रकार के इस समय जो गुट बन रहे हैं, मैं आगे कहता हूं, आगे जाकर मैंने मेरे किताब में भी लिखा था, और भी मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनी लेटरल्स विल एमर्ज, क्योंकि एक बहुत बड़ा डिसरप्शन दुनिया में हो रहा है. अभी तक जो बड़े देश है वो अमेरिका अपना स्थान छोड़कर भाग रहा है, विच इज ए रियालिटी वी आर ऑल सीइंग. सो द काइंड ऑफ वर्ल्ड दैट विल टेक शेप इन दैट बिग कंट्रीज लाइक इंडिया हैव टू प्ले अ वेरी बैलेंस्ड रोल. वो रोल हम आज प्ले कर रहे हैं. हमारा वसुधैव कुटुंबम का स्पिरिट वो है कि जहां जहां जिस प्रकार का इस प्रकार के मिनी लेटरल्स, मल्टी लेटरल्स एमर्ज करेंगे, उनमें भारत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सके.
6: राम माधव जी, इससे आगे बढ़े और सवाल मिनी लेटरल इन अ मल्टी लेटरल वर्ल्ड पे पूछें, उससे पहले एक सवाल इस पी चिदम्बरम ने जो बयान दिया है उसका उस पे आपकी टिप्पणी लेंगे. What benefits are we getting? That's what the former finance and home minister has said. I don't think the last two or three BRICS summits have resulted in tangible benefits or tangible results. Emerging from जो आपने कहा कि भारत SCO का पार्ट है, G20 का पार्ट है, लास्ट ईयर प्रेसिडेंसी भारत के पास थी, क्वाड का पार्ट है, इतने सारे ग्रुप्स का पार्ट होने से बेनिफिट क्या है?
5: ऐसा है, इनको प्रधानमंत्री जी कहते नाराज फूफा. अब जब आप कर रहे थे व्हेन यूपीए होस्टेड ब्रिक्स समिट इन 2012 हियर, डिड एनीबडी से दैट व्हाट इज द बेनिफिट आउट ऑफ इट? That time also remember, we were a part of many other groupings. Look, that's why I said in the beginning, अब चलो दूसरे लीडरशिप में हो रहा है, बड़ा हो रहा है, उसमें इंडिया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले रहा है, किसी को थोड़ा थोड़ा जलन हो रहा है तो मैं कुछ नहीं कह सकता, बट टू डिसमिस दैट दिस फोरम्स हैव नो रिलेवेंस इज कंप्लीट लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंटेम्पररी ग्लोबल रियलिटी. आई एम सॉरी, इट हैज कम फ्रॉम ए सीनियर लीडर ऑफ द अपोजिशन पार्टी, somebody who served as India's foreign minister. At least they should understand that in the current geostrategic, geopolitical scenario, each of these groupings, for example, BRICS plus today, is a group of 11 countries. And remember, these are not small countries. I can tell you, between China, India and Indonesia, three countries, we are 45% of the world's population. And do you know that these are the three countries which are registering highest growth rates? 7.8 India, 5.7 Indonesia, 4.5 China. Fastest growing countries, big economies, on one platform, we are sitting together discussing about global issues. Half of, more than almost 60% of the world's population is a part of this BRICS arrangement. If somebody says it is, what is the use of it, I only pity them. And I mean, इसलिए मैंने कहा ये नाराज फूफा एटीट्यूड है, कोई दूसरा कर रहे तो हम कहेंगे हाँ इससे क्या होने वाला है. वेरी इंपॉर्टेंट अरेंजमेंट टुडे, वी लुक फॉरवर्ड टू गुड आउटकम्स फ्रॉम दिस ब्रिक्स समिट.
3: सर असल में एक कंटेंशन ये कि चिदंबरम जब कहते हैं तो वो कहते हैं हमारे समय में तो बहुत कुछ हो रहा था, अब ब्रिक्स के इन बैठकों से कुछ नहीं निकल रहा, नंबर वन. लेकिन क्या हम बाली से लेकर दिल्ली तक के उन स्टेटमेंट्स को भूल जाते हैं? दूसरी चीज, क्या भारत जो बार बार डायलॉग एंड कंसेंसस, जिसकी सबसे बड़ी कमी इस समय दुनिया में दिख रही है, उनकी बातें करता है, तो ये क्या इकलौता रास्ता नहीं है जो समाधान निकालेगा?
5: आई एम प्रिटी श्योर दैट दिस ब्रिक्स समिट विल कम आउट विथ अ गुड स्टेटमेंट बेस्ड ऑन overall consensus of 11 member countries and a few invited participant countries. I'm quite hopeful about it. There's a reason for my hope. Humne jab G20 host kiya tha 2023 mein, 20 deshon ke beech, us samay bahut bada mudda Ukraine-Russia ka yuddha tha. Consensus banana aasan nahi tha. And that was 20 countries. फिर भी मोदी जी की कुशलता कहिए, हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री का एफर्ट्स कहिए, उसके चलते हमने कॉन्सेंसस बनाया, स्टेटमेंट निकाला. आपने बाली की बात की थी, 2022 में बाली में G20 की समिट थी, उस समय जस्ट फ्रेश था यूक्रेन रशिया वार, फ्रेश था, फरवरी में शुरू हुआ था, चार महीने के बाद बाली समिट हुई. बाली समिट में ऑल्दो रेस्पॉन्सिबिलिटी वाज ऑन इंडोनेशिया, हमने इंडिया ने प्रोएक्टिव रोल प्ले किया. दिस वॉज एक्नॉलेज्ड बाय दोस कंट्रीज, लावरोव अदर्स ने एक्नॉलेज किया कि इंडिया के प्रोएक्टिव रोल के चलते G20 से एक कॉन्सेंसस का बयान निकला था. मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूं इस बार ब्रिक्स में भी हमारे सरकार और हमारे प्रधानमंत्री का अपने एक आरा है, उस आरा के चलते हम सभी देशों के नेताओं को कन्विंस करेंगे, अच्छा स्टेटमेंट को बाहर निकालने में सफल होंगे. बट रिमेंबर, दीज फोरम्स आर नॉट जस्ट अबाउट ए कॉन्सेंसस स्टेटमेंट. ऑफकोर्स It's always a good sign to have a statement coming out, emerging out of the consensus. But beyond consensus, between countries, so many interactions happen. At bilateral level, they happen. 3-4 countries, between them, they happen. Each country puts forward its agenda, which is accepted by 8 countries, 9 countries. That will be taken forward. There will be many other benefits of such gatherings. Coming out with a statement based on complete consensus is one important thing, because BRICS ka ek niyam hai ki koi bhi cheez ho to consensus se hona hai. Wo ek BRICS ka apna andaruni niyam hai. Isliye consensus banana padta hai. Aaj ke situation mein thoda difficult hai. We understand, like Gaza issue is there, Palestine issue is there, that is a contentious issue. Then there is this issue of Ukraine. These contentious issues are there, although in BRICS Ukraine is not the real issue. Real issue will be Palestine. But we will see how things shape up. But I'm pretty confident we will come out with a good statement.
6: Yes, and I agree with you, Mr. Ramadev, that Delhi declaration of G20 was certainly an achievement. given what we have heard, that 300 hours of negotiations, 250 meetings that went on, you were speaking about how BRICS is growing. From 5 nations to 11 and almost 50 countries, we are told, waiting in the queue to join this grouping. Does a big group, does a bigger BRICS give heft to India, or does it dilute India's voice?
5: BRICS, from a 3-country grouping in the beginning, Russia, India and China was the first group. From there, it became 4, it became 5, today it became 11, or probably 12, and it will. There are many other countries which are keen to join. But today, BRICS has emerged as a very important voice of the global south. BRICS ek aisa arrangement hai jisme European powers and America ka isme is group mein nahi hai. This group represents the non-Western world. And non-Western world ka most powerful voice ke roop mein aaj BRICS emerge kiya hai. Aur India ka kaafi important role is, you call it global south or you call it non-Western world, ye hai. And please remember, Prime Minister Modi's relations with leaders in global south are a very important factor in India's proactive role in BRICS. It will definitely help India, but it also will help, give a good place to the voice of global south.
3: Isme jo do bahut pramukh awaazein hain, ek Bharat, ek China. Hamara rishta ek taraf us LAC ke aarpaar जो भारत और चीन के बीच नजर आता है, अनरिजॉल्व्ड मुद्दे जिसको लेकर लगातार बातें हो रही हैं, ये उम्मीद की गलवान के बाद जब पहली बार प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति बैठेंगे तो बहुत सारी गांठें वहां पर भी और सुलझेंगी. हमारा रिश्ता कैसा है सर, ब्रिक्स के भीतर सहयोग और ब्रिक्स से पार हम देखें तो टकराव?
5: फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्रिक्स कोई बायलैटरल फोरम नहीं है, सो बायलैटरल इश्यूज का ब्रिक्स में कोई स्थान नहीं है. देशों के बीच हो सकते हैं इश्यूज, हो सकते हैं, हमारा चीन के बीच इश्यूज है, उनका प्लेटफॉर्म अलग है. एंड वी आर वेरी क्लियर, बोथ इंडिया एंड चाइना, वी बोथ कंट्रीज आर वेरी क्लियर दैट द इश्यूज बिटवीन अस विल प्योरली बी डेल्ट विद एट द बायलैटरल लेवल. ब्रिक्स उसका कोई फोरम नहीं है, ब्रिक्स के फोरम पर उन मुद्दों को उठाना भी नहीं होता है. ब्रिक्स टॉक्स अबाउट द लार्जर इश्यूज ऑफ ग्लोबल साउथ, इट्स द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ. रही बात बायलैटरल की, है हमारे दोनों देशों के बीच कुछ बॉर्डर को लेकर, ट्रेड को लेकर इश्यूज है, बट एट द सेम टाइम हम दोनों देशों के बीच एक स्ट्रांग ट्रेड रिलेशनशिप भी है. आई एम श्योर वी ऑल नो दैट इंडियाज ट्रेड रिलेशनशिप विद चाइना इज $159 बिलियन, दैट इज इंडिया चाइना ट्रेड बायलैटरल ट्रेड. एंड इफ यू एक्सक्लूड सर्विसेज सेक्टर, चाइना इज द लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ इंडिया. With services sector, US is the largest trade partner, above $200 billion trade hai. So, there is a very, very in-the-face reality that while we have certain tensions between our two countries with regard to our borders, with regard to how China, behaves with us as far as that line of actual control is concerned, it's also a reality that we have a very big trade relationship between our two countries. There also we have an issue in this $159 billion trade. Trade deficit is more than $100 billion. I mean, our exports and our imports, a huge mismatch exists. So we have been trying to, increase our exports to China so that there can be some trade balance, in that China has to take a few steps, a few measures. They have to ease their restrictions, trade restrictions. These are the things on which also a lot of negotiations are going on border. Of course, we have a border commission headed by our NSA on our side and foreign minister on their side. They keep talking, and recent talks happened just last week in Beijing. We are engaged with each other on those issues.
6: Now, since you wrote in your book last year about, and I have a copy of this book right here, The New World Order, 21st Century Global Order in India, you had written about mini-lateral groups. And what we saw play out this year itself was the Macau Pact, which, of course, has raised a lot of questions, but at the same time, it appears to be that mini-lateral group based on a different understanding, a defense partnership and a strategic partnership. How do these mini-lateral, are you seeing emergence of more of these mini-lateral groups in a multipolar world?
5: Oh, yes. We have anyway entered a multipolar order earlier in this century. 21st century, the new millennium start hua. New millennium mein, we have entered the multipolar order. Today, there are no one or two poles which are dominating the entire world. There are different poles that have emerged. My thesis in this book was that when you talk about multipolarity, it's not just about individual countries. There can be mini-lateral groups. Like, you know, you talked about Makkah agreement. That particular alliance of three countries will emerge as a pole. That will have its own influence. That will have its own, own priorities, its own, activity in the region, especially in West Asia and all that. So there will be such mini-laterals emerging, playing an important role in the new multilateral world order. That's going to be a reality. You know, for that matter, we try to create something called BBIN. A couple of decades ago. What is BBIN? Bhutan, Bangladesh, India, and Nepal. We created that. We tried to create road connectivity, energy connectivity, energy corridors, road corridors between these countries. So like that, there will be smaller groupings rising depending on certain situations and certain interests. The reason being that old big power politics has ended today. And US is in a self-destruction mode. They are on a self-destruction mode. So their influence is waning on the world. So this is a kind of an emerging reality in the world today.
3: यही कारण रहा कि अमेरिका की तरफ से वहाँ के एक्सपर्ट्स ने ये जरूर कहा कि जो नीतियाँ वहाँ पर रहीं उसने भारत को अमेरिका से कुछ दूर धकेला जब हम ये छोटे ग्रुपिंग्स की बात कर रहे हैं सर द मल्टीलैटरलिज्म इन फॉरेन रिलेशंस दैट वी आर सीइंग क्या एक खेमा दूसरे खेमे को एक ग्रुपिंग दूसरे ग्रुपिंग को कुछ असहज कर सकती है कुछ इनसिक्योर कर सकती है इंटरेस्ट को लेकर और इसमें बहुत बड़ी चीज हो जाती है जब हम अमेरिका के साथ अपने रिश्ते और ब्रिक्स के समय अमेरिका की उस इनसिक्योरिटी को देखते हैं और उस डी डॉलराइजेशन की चर्चा बार बार उसकी तरफ से देखते हैं
5: यस वी आर पासिंग थ्रू अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन द ओल्ड ऑर्डर इज डेड आर नियरिंग इट्स एंड द न्यू ऑर्डर इज येट टू टेक शेप अभी नया कोई वैश्विक परिदृश्य बना नहीं है ओल्ड ऑर्डर फेल हो गया है ओल्ड ऑर्डर जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमने बनाया है वो खत्म हो गया है ये जो इंटररिनम है इट्स द टाइम फॉर मॉन्स्टर्स इस समय अनेक प्रकार के शक्तियां उठेंगी इसी में बहुत केयरफुली कंट्रीज को नेविगेट करना पड़ेगा वी आर इन दैट पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम एन ओल्ड ऑर्डर टू ए न्यू ऑर्डर What is the final shape of that new order? None of us know today. But we will have to create, probably build a new order. But during this interim, what you experience is, it is the time for monsters, it is said. Is samay anek prakar ki taakatein uthengi. Haan, usse kuch problems ho sakte, usse kuch challenges ho sakte hai, usko deal karna padega. When certain countries rise, or certain groups rise, they create tensions to you. They create challenges to you. Countries have to carefully navigate these challenges until you build a new order where you will be able to assimilate all these new power centers. Today, for example, there was that UN-centric world order that we tried to create after Second World War. Uski halat kya ho gayi? Koi sunta hai UN ki baat aaj? Koi sunne ka koshish bhi kare to koi na koi desh rehta jo veto de dega? Five countries have veto power. It's another matter. We also want to become a permanent member so that we also have a veto power. Five countries ke veto ke saath UN chalna hai raha hai. Imagine 10 countries have veto power. So we have to now seriously think about what shape the new order will take. It will take time. Until then, you will have challenges.
6: जिस मॉन्स्टर की आप बात कर रहे हैं, क्या ये मॉन्स्टर बिग टेक कंपनीज भी हैं? क्या आप ये मानते हैं कि ये जो न्यू ऑर्डर होगा वो शायद देश नहीं डिसाइड करेंगे, वो मनी पावर डिसाइड करेगा और वहां पर रोल ऑफ टेक्नोलॉजी होगा, एआई होगा, रोबोटिक्स होगा?
5: ओह यस, सर्टेनली. आई मीन, आई एम नॉट कॉलिंग देम मॉन्स्टर्स. मॉन्स्टर्स इज अ लाइटर वे आई सेड इट. What I tried to say was certain uncontrollable forces will rise. Today, in fact, I have a chapter in my book called Heteropolarity. Heteropolarity का अर्थ ये है कि जब हम multipolarity की बात करते हैं तो हम देशों की बात कर रहे हैं या group of countries की कर रहे हैं. मैंने कहा millilaterals. Heteropolarity में countries और group of countries के अलावा other forces आएंगे. They will be much more powerful. Today, big tech companies like, you know, Anthropic or IBM or Tesla, you know, these companies, they are very powerful in the world today. There are certain individuals, you know, hum bhi hamara right-wing ecosystem mein kuch individuals ki baat kehte hai, phalana vyakti ne fund kiya phalana andolan ko, phalana vyakti hamara country ko destabilize karna chahta hai. Who is he? He's just an investor. I can invoke the name. We always see the name of George Soros. अरे जॉर्ज सोरोस तो इसको फंड कर रहा है, हमारे देश को अस्थिर करना चाहता है. जॉर्ज सोरोस कौन है? उनके पास कोई देश है क्या? उनके पास कोई आर्मी है क्या? इज जस्ट एन इन्वेस्टर. बट टुडे दैट इन्वेस्टर इज सो पावरफुल दैट कंट्रीज हैव टू बी केयरफुल, वेरी अबाउट हिज एक्टिविटीज. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड हेटरोपोलैरिटी. एंड टुडे द टेक कंपनीज, एस्पेशली बिग टेक एंड डीप टेक कंपनीज, हैव एमर्ज्ड सो पावरफुल. आई गिव यू वन एग्जांपल हाउ पावरफुल दे आर, जस्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड. गूगल ने जस्ट वन वीक एगो अनाउंस किया कि दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट $200 billion इन दिस ईयर ऑन एआई. $200 billion ऑन एआई. आई विल कंपेयर इट विथ व्हाट हैपेंस इन अदर कंट्रीज. हमारा एक नेशनल अनुसंधान मिशन है, हमने 1,00,000 करोड़ उसका रखा. 1,00,000 करोड़ इज रफली अबाउट $15 billion. एक कंट्री का इन्वेस्टमेंट से 10-15 times ज्यादा इन्वेस्टमेंट एक कंपनी कर रहा है. That's the kind of money power. It's not just about money power. The technology that they are bringing. You know, Anthropica, a young technocrat yesterday, he quit the company. Yes. He came out and gave an interview on CNN yesterday night. I don't know, some of you would have watched it. He said that, you know, what Anthropy and OpenAI are doing is very dangerous. They are going to finish off the human race. They will kill all of us. Will they kill? Maybe he's exaggerating. But टेस्ला का एलन मस्क ने कहा, इन 5 years यू विल हैव 1 billion ह्यूमनॉइड्स, 1 billion रोबोट्स. दुनिया की आबादी 7 billion और 8 billion है, और 1 billion ह्यूमनॉइड्स जुड़ेंगे. एंड दीज ह्यूमनॉइड्स आर मच मोर इंटेलिजेंट देन यू, मच मोर पावरफुल देन यू. दे विल रूल द रूस्ट. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस कंपनीज हैव बिकम रियली वेरी बिग, वेरी पावरफुल. That's the kind of heteropolarity we have entered into today, where tech companies, certain individuals, certain NGOs, they become very powerful. Countries have to deal with them. Countries have to tackle them.
6: Since you're talking about dealing, do you think these groups like BRICS, G20 should look at regulation?
5: Yeah, of course. One very important regulation that is required is about AI, artificial intelligence. Countries are seized of it. हम उसके बारे में, भारत भी सोच रहा है, बाकी देश भी सोच रहे हैं. As I said, allowing it to grow without any regulation can be detrimental to the future of humans. This is the general view of everybody. I mean, I gave you the example of what that Anthropy employee said yesterday on CNN. So how do we draw those red lines? It's something that is bothering everybody. Very interestingly, हमने इंडिया में थोड़ा सोचा, ज्यादा अभी सोचा नहीं है, बट एन इंस्टीट्यूशन लाइक वैटिकन थॉट अबाउट इट इन 2020. वैटिकन ने एथिक्स ऑफ एआई पर एक कॉन्फ्रेंस किया 2020 में. द पेपर इज अवेलेबल, इट्स कॉल्ड रोम कॉल फॉर एआई एथिक्स. इट्स अवेलेबल ऑन इंटरनेट. 6-point charter अबाउट हाउ एंड वेयर टू रेगुलेट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेयर टू स्टॉप. वन वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट दे रेज्ड इज, इफ एआई इज गुड फॉर ह्यूमैनिटी, लेट्स गो फॉर इट, लेट्स डेवलप इट. But operational sentence is, man should be supreme. Do you will continue?

0: फैक्ट एज आई टोल्ड यू मेजर क्राइसिस की तरफ दुनिया जा रहा है, ऐसा मैंने प्रारंभ में कहा. वन ऑफ देम विल बी द फूड क्राइसिस, गोइंग टू बी अ वेरी मेजर क्राइसिस फॉर द मैनकाइंड. ब्रिक्स इज सीज्ड ऑफ इट. हमने इंडिया में जब ब्रिक्स को हमने चेयर लिया था उसमें हमने नेशनल रेजिलियंस की बात की थी, क्लाइमेट इश्यूज की बात की थी, इनोवेशन. प्राइम मिनिस्टर का जो फेवरेट और बहुत उनका आग्रह रहता है वो इनोवेशन साइड का हमने उस पर भी आग्रह रखा था. सो दीज इश्यूज आर गोइंग टू बी द मेन इश्यूज इन दिस ब्रिक्स समिट. एंड आई एम होपफुल दैट वी विल हैव वेरी प्रोडक्टिव डिस्कशंस एंड आउटकम फ्रॉम दिस कॉन्फ्रेंस.
1: We certainly look forward to the 18th summit, BRICS summit that India is hosting. Mr. Ram Madhav, really appreciate your time. Thank you for joining us.
2: I request Mr. Ram Madhav to please stay on the stage, and requesting Swetha and Maria to hand over our token of appreciation, and wishing all the very best to Mr. Ram Madhav as the National Vice President of the BJP in the new role.
3: Co-presented by Hint. Ek hint to dete. Powered by Siksha O Anusandhan University, empowering students for a brighter future.

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: यू
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: A new world order is taking shape. BRICS is at the center of it. As the world changes, India leads the conversation. Where does BRICS go from here? The future of BRICS, decoded by India Today's strongest voices. India Today Global BRICS Roundtable, 10th September. All through the day, only on India Today Global.

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

0: BRICS comes to the table and the world is watching.
1: India today leads the countdown with the biggest BRICS curtain raiser.
2: The minds shaping the world all on one platform.
3: From geopolitics to AI, security to tourism, hear it all only at the India Today Global Roundtable.
4: All through the day, only on India Today Global.
5: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
6: ए यू
7: सोच बदलो और बैंक भी।

0: Breaking news coming in. Row over Mirzapur movie song. Rapper accuses makers of using song without credit. Rapper's song Shurveer has been used in the film Mirzapur the movie. Rapper alleges song used in scene showing gangsters. This is an allegation raised by Rajasthan-based musician Raparia Balam, who's made a big charge against the makers of the film. Raparia Balam opens up on the controversy. Rajasthani musician Raparia Balam has accused the makers of Mirzapur the movie of using his song Shurveer without permission or credit being given to him. And this controversy has sparked online backlash due to the track's historical association with 16th century Mewar warrior King Maharana Pratap. So big controversy has now come up over the use of this song in the film, as musician, Rajasthan-based musician, says his song has been used without permission, without even giving him credit. Mirzapur, the movie, has been making headlines after it has been released. And remember, the TV show that it originally came in had been widely successful, which is why this film was which is why this film has been made and is also getting a lot of eyeballs. The musician raising allegations that his song has been used illegally by the filmmakers, and another controversy being raised because the film has picturized gangsters and violence on a song that is connected to Prithviraj Chauhan.
1: Maharana Pratap ji ko samarpit ye gana hum glorify kar rahe hain movie mein villains ko, kya ye theek hai yaar? Agar मिर्जापुर टीम अप्रोच करती ना कि यार रैपरिया भाई आपका गाना चाहिए हमको इस तरह से, अरे यार 10 आइडियाज दे देते, पर इस तरह से बिना परमिशन के गाना उठा रहे हो आप, आई डोंट नो किसने आपको ये राइट्स दिए हैं, किससे आपने लिए हैं, जिनसे भी लिए हैं मैं चाहूंगा कि यार आप पूछो कि कॉपीराइट्स हैं आपके पास। तो मैंने शुरू में भी कहा है कि दिल तो दुखा है यार, क्यों नहीं दुखेगा यार, ये सरासर राजस्थान का अपमान है, महाराणा प्रताप जी का अपमान है, और ये चीज हम तो नहीं सहन कर पाएंगे।
2: महाराणा प्रताप हमारे देश का गौरव, देश के सबसे पहले स्वतंत्रता सेनानी, उनके बारे में मिर्जापुर फिल्म में जिस प्रकार फिल्मांकन किया गया और फिल्म के दरमियान उनके संदर्भ में, महाराणा प्रताप के संदर्भ में जिस प्रकार गीतों के पीछे से पार्श्व संगीत में रचना की गई, उस पर घोर आपत्ति है। हमारे ऐतिहासिक पुरुषों को, जो पूरे देश का गौरव हो, उनके इतिहास को इस प्रकार छोटा करने की कोशिश ये कतई बर्दाश्त नहीं होगी। मैंने केंद्रीय सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष जी को चिट्ठी लिखी है, शशि जी को, और निश्चित तौर पर मैं कोशिश करूँगा, मैं केंद्रीय मंत्रियों से भी मिलूँगा और इस फिल्मांकन को या तो रोकें या दुरुस्त करें, इस प्रकार की हम कोशिश।
0: And we just heard this comment coming in from the rapper, Raparia Balam, who has raised this row, clearly saying that this particular track celebrates the valor of Maharana Pratap and his horse Chetak, but it has been played during an action sequence involving gangsters and gang violence. He's raised serious objections to both aspects. One, that the song has been used without his permission, without giving him credit. And secondly, that a song that talks about Maharana Pratap is being used in a scene showing gang violence. In fact, former royal and direct descendant of Maharana Pratap, Vishwaraj Singh Mewar, who has also raised this concern, not just the musician, but also the descendant of Maharana Pratap, raising this issue of why this song, which is about the legendary king, is being used for a sequence for a visual sequence that shows gang violence. The controversy, in fact, centers on the opening sequence where the character Munna Tripathi and his gang are shown engaged in a violent shootout. So that is why this issue is being raised. Let's listen in once again to what the musician and the politician are saying.
1: महाराणा प्रताप जी को समर्पित ये गाना हम ग्लोरीफाई कर रहे हैं मूवी में विलन्स को, क्या ये ठीक है यार? अगर मिर्जापुर टीम अप्रोच करती ना कि यार अप्रिया भाई आपका गाना चाहिए हमको इस तरह से, अरे यार 10 आइडियाज दे देते, पर इस तरह से बिना परमिशन के गाना उठा रहे हो आप, आई डोंट नो किसने आपको ये राइट्स दिए हैं, किससे आपने लिए हैं, जिनसे भी लिए हैं मैं चाहूंगा कि यार आप पूछो कि कॉपीराइट्स हैं आपके पास। तो मैंने शुरू में भी कहा है कि दिल तो दुखा है यार, क्यों नहीं दुखेगा यार, ये सरासर राजस्थान का अपमान है, महाराणा प्रताप जी का अपमान है और ये चीज हम तो नहीं सहन कर पाएंगे।
2: महाराणा प्रताप हमारे देश का गौरव, देश के सबसे पहले स्वतंत्रता सेनानी, उनके बारे में मिर्जापुर फिल्म में जिस प्रकार फिल्मांकन किया गया और फिल्म के दरमियान उनके संदर्भ में, महाराणा प्रताप के संदर्भ में जिस प्रकार गीतों के पीछे से पार्श्व संगीत में रचना की गई, उस पर घोर आपत्ति है। हमारे ऐतिहासिक पुरुषों को, जो पूरे देश का गौरव हो, उनके इतिहास को इस प्रकार छोटा करने की कोशिश ये कतई बर्दाश्त नहीं होगी। मैंने केंद्रीय संसद बोर्ड के अध्यक्ष जी को चिट्ठी लिखी है, शशि जी को, और निश्चित तौर पर मैं कोशिश करूंगा, मैं केंद्रीय मंत्रियों से भी मिलूंगा और इस फिल्मांकन को या तो रोके या दुरुस्त करे, इस प्रकार की हम कोशिश।
0: So we just heard the musician who has created this song as well as the political reactions coming in on the use of this song Shurveer in the movie Mirzapur. Remember, this song that was composed and sung by the musician Raparia Balam, who celebrates the valor of Maharana Pratap, the historical legendary king of Mewar, and that is why the objections are now being raised for both aspects. One, that the song was used without permission, without credits, and second, and that is also creating a huge controversy politically, that a song that glorifies the Rajput king and his valor in battle is now being used in a gang war related movie. In fact, the visualization of the song is in the backdrop of a gang war.
3: Thank you for tuning into India Today. I'm Suesha Sawant. And for most of you who have watched Mirzapur the movie, the Shurveer controversy, that is the latest that is making headlines. Yes, Raparia Balam, who has questioned the use of his Maharana Pratap tribute song that was used during the film, during a very crucial sequence. And let's understand from him directly why he is objecting to the use of this song. Raparia Balam, aapka dhanyavaad karna chahungi India Today se baat karne ke liye. Sabse pehle, aap kyun aur kis basis par is gaane ke use par object kar rahe hain?
1: Namaste, Khamagani Ram Ram. Ma'am, abhi publicly sab cheezein saamne aa gayi hain ki jis tarah se gaana use nahi hua hai, wo misuse hua hai, wo ek religious sentiment hai. पूरे भारतवर्ष का प्राइड है, महाराणा प्रताप जी पे वो गाना है और जिस तरह से वो गाना एज ए सिंग, जिस तरह से वो गाना एज ए बैकग्राउंड म्यूजिक विलन्स को ग्लोरीफाई किया है, उस चीज का विरोध है। वहाँ मेरी परमिशन के बिना वो गाना यूज हुआ है, मेरी आवाज है, मेरा म्यूजिक है, मैं उस गाने का कॉपीराइट होल्डर हूँ, बिना मेरी परमिशन के लाइसेंसिंग दी गई है, जो कि सरासर गलत है। और देखिए, मैं इस चीज का विरोध कर रहा हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ, पूरा राजस्थान इस चीज का विरोध कर रहा है और पैन इंडिया से भी हमें सपोर्ट मिला है। तो ऐसा नहीं कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ, नहीं, बिल्कुल, हमने जो शुरू सीरीज के गाने हैं हमने डेडिकेट किए हैं कंप्लीटली, हमारा वो ट्रिब्यूट है हमारे वीर योद्धाओं के लिए जिन्होंने इस देश की आजादी में अपना सब कुछ बलिदान कर दिया।
3: तो बालम जी, अभी ट्रूपर रिकॉर्ड्स का कहना है कि उन्होंने लीगली लाइसेंस किया है उस गाने को प्रोडक्शन हाउस को, जो कि एक्सेल एंटरटेनमेंट है। आप किस तरह से इसको रिस्पॉन्ड करते हैं, और हमें ये भी बताइए कि कॉपीराइट और लाइसेंसिंग राइट्स इस गाने के किसके पास हैं?
1: कॉपीराइट एंड लाइसेंसिंग राइट्स मेरे पास ही है मैम। आप चाहे पब्लिक डोमेन में इसको सर्च कर सकते हैं, आप रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट्स पे ये गाना मेरे नाम से ही रजिस्टर्ड है। पूरा जो साउंड रिकॉर्डिंग है, ऑडियो, लिरिक्स, म्यूजिक और जो आवाज है, वो सारी मेरे नाम से ही रजिस्ट्रेशन है। अगर ये दावा करते हैं तो उनको बोलिए मैंने तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सब पब्लिक कर दिया है, सबके सामने है कि गाना किसके नाम से रजिस्टर है। देर आर जस्ट द डिस्ट्रीब्यूटर्स। मैम देखिए, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं एक सिंगर हूँ, मैं एक कंपोजर हूँ, मैं गाने बनाता हूँ, लेकिन मुझे प्लेटफॉर्म्स चाहिए होते हैं ताकि मैं गाने स्पॉटिफाई पे, यूट्यूब म्यूजिक पे, इन सब पे लेकर आऊँ। ठीक है, वो हर आर्टिस्ट का होता है चीज़ें। ठीक है, तो ऐसा ही हमारा एसोसिएशन हुआ था। हम बहुत टाइम से राजस्थानी कल्चर को, राजस्थानी जो हमारी धरोहर के जो म्यूजिक है, वो मॉडर्न हिप हॉप फ्यूजन के साथ हम लाते आए हैं हमेशा, और अभी भी आगे भी लाते रहेंगे। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये रहा है कि हम अच्छे से अच्छे रूटेड गाने लेकर आएं। शूरवीर सीरीज में हमने छत्रपति संभाजी महाराज पे भी गाना बनाया है, छत्रपति शिवाजी महाराज पे भी गाना बनाया है, जिसके मतलब 400-500 मिलियंस ऑफ व्यूज हैं। वैसे ही ये गाना भी हमें इसी एक ट्रिब्यूट, एक श्रद्धांजलि देते हुए महाराणा जी के लिए बनाया था। और ये गाना देखिए, हम सबका है, आपका है, मेरा है, हम सबका है जिसने ये प्यार दिया। हमें कोई आपत्ति नहीं है, अगर कोई और गाना होता, मिसयूज हो जाता, यूज हो जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ये गाना बिना इजाजत के आगे लाइसेंसिंग देने से पहले उनको सोचना चाहिए था, पूछना चाहिए था। ये मैं अपनी हक की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर जो
4: फॉर सेंचुरीज स्पेस इंस्पायर्ड अवर इमेजिनेशन, today it saves life on earth. From climate and crops to oceans and communities, the promise of space is infinite. Our responsibility is collective. As orbits become more crowded, technologies more powerful, and actors more numerous, our choices must be clear. Cooperation over confrontation, sustainability over short-term gain, and inclusion over exclusion. Friends, India's approach is rooted in Vasudhaiva Kutumbakam, that is, one earth, one family, one future. This spirit must now travel beyond earth. We support a safe, secure, peaceful, and sustainable space domain anchored in international law, dialogue, and multilateral cooperation. Scientific data must serve the common good with openness and integrity. India's space journey reflects this philosophy. ISRO, which stands at the heart of this journey, has earned global admiration for its excellence and cost-effective missions. Its capabilities serve farmers and fishermen, weather forecasting, disaster management, and navigation. More than 430 satellites from 34 countries have traveled to space aboard Indian rockets. ISRO's technologies and partnerships serve not only India, but the wider world. Behind this global trust is the dedication and hard work of generations of Indian scientists, engineers, and technicians. Working day and night, they have built ISRO's global reputation. Mission by mission, success by success, and given India a place of pride amongst space-faring nations. Chandrayaan-3 made India the first nation to land near the lunar South Pole. Aditya L1 is unlocking the secrets of the sun. Last year, an Indian visited the International Space Station. Looking ahead, we aim to establish an Indian space station by 2035 and send an Indian to the moon by 2040. In all these efforts, our guiding principles have been clear. Their benefits must reach all humanity. Alongside ISRO, India's private space sector is also surging in a big way. The energy of enterprise is joining the excellence of ISRO. France has been a trusted partner since the Indian space program began at Tumba in the 1960s. Today, our cooperation spans Earth observation and advanced technologies, uniting scientific excellence with human purpose. We invite France and the world to be co-travelers in India's next space frontier. Friends, let the space summit in Paris send a clear message. We will explore together, innovate together, and protect space together for all humanity and for generations to come. I convey my best wishes to all the participants. Thank you.
0: That was Prime Minister Modi's message ahead of the BRICS summit. He's also focusing on the space victories and also mentioning how Indian space station is likely to be launched by 2035 and first Indian to go to moon would be by 2040 from an Indian space station, and that the benefits of the Indian space programs would reach all humanity. And with that, it's time for a short break. We have a lot more lined up for you. Stay tuned.

0: CU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: एक्टिव सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: फाइव डिस्टिंक्ट फेसेस, वन कॉमन पर्पस, इंडिया इन्फॉर्म्ड एंड अहेड, वेयर द साउथ फाइंड्स अ वॉइस, सुपर सिक्स, शार्प क्वेश्चंस, जीरो डिस्ट्रैक्शंस।
4: यू ऑल्सो स्पीक ऑफ पुअर चिल्ड्रन। Kangana ji, one can always draw analogies sitting high in ivory towers.
3: To the point, the nation's agenda, nothing else matters.
5: There are some who say Pakistan may not be on the verge of breaking up. Pakistan army is unable to control the situation.
3: India first, where decades of experience speaks.
6: So you want to raise your voices, but what do you want to see?
3: News Today, exclusives that shape the headlines.
7: Southern states all unite saying that this is unfair on them.
3: News Track, every defining moment, every story that matters. The team that always speaks for you, because you matter.

को प्रेजेंटेड बाय हिंट, एक हिंट तो देते। पावर्ड बाय शिक्षा ओ अनुसंधान यूनिवर्सिटी, एम्पावरिंग स्टूडेंट्स फॉर अ ब्राइटर फ्यूचर।

0: एक एक कंटेंशन ये कि चिदंबरम जब कहते हैं तो वो कहते हैं हमारे समय में तो बहुत कुछ हो रहा था, अब ब्रिक्स के इन बैठकों से कुछ नहीं निकल रहा, नंबर वन. लेकिन क्या हम बाली से लेकर दिल्ली तक के उन स्टेटमेंट्स को भूल जाते हैं? दूसरी चीज, क्या भारत जो बार बार डायलॉग एंड कंसेंसस, जिसकी सबसे बड़ी कमी इस समय दुनिया में दिख रही है, उनकी बातें करता है, तो ये क्या इकलौता रास्ता नहीं है जो समाधान निकालेगा?
1: I am pretty sure that this BRICS summit will come out with a good statement based on overall consensus of you know 11 member countries and a few invited participant countries. I'm quite hopeful about it. There's a reason for my hope. हमने जब G20 होस्ट किया था 2023 में, 20 देशों के बीच, उस समय बहुत बड़ा मुद्दा यूक्रेन रशिया का युद्ध था, कॉन्सेंसस बनाना आसान नहीं था, एंड दैट वाज 20 कंट्रीज. फिर भी मोदी जी की कुशलता कहिए, हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री का एफर्ट्स कहिए, उसके चलते हमने कॉन्सेंसस बनाया, स्टेटमेंट निकाला. आपने बाली की बात की थी, 2022 में बाली में G20 की समिट थी, उस समय जस्ट फ्रेश था यूक्रेन रशिया वार, फ्रेश था, फरवरी में शुरू हुआ था, चार महीने के बाद बाली समिट हुई. बाली समिट में ऑल्दो रेस्पॉन्सिबिलिटी वाज ऑन इंडोनेशिया, हमने इंडिया ने प्रोएक्टिव रोल प्ले किया. दिस वाज एक्नॉलेज्ड बाय दोस कंट्रीज, लावरोव अदर्स ने एक्नॉलेज किया कि इंडिया के प्रोएक्टिव रोल के चलते G20 से एक कॉन्सेंसस का बयान निकला था. मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूं इस बार ब्रिक्स में भी हमारे सरकार और हमारे प्रधानमंत्री का अपने एक आरा है, उस आरा के चलते हम सभी देशों के नेताओं को कन्विंस करेंगे, अच्छा स्टेटमेंट को बाहर निकालने में सफल होंगे. बट रिमेंबर, दीज फोरम्स आर नॉट जस्ट अबाउट ए कॉन्सेंसस स्टेटमेंट. ऑफकोर्स देर इज ऑलवेज, इट्स ऑलवेज ए गुड साइन टू हैव ए स्टेटमेंट कमिंग आउट, एमर्जिंग आउट ऑफ द कॉन्सेंसस. बट बियॉन्ड कॉन्सेंसस, बिटवीन कंट्रीज सो मेनी इंटरेक्शन हैपन, एट बायलैटरल लेवल दे हैपन, 3-4 countries between them they happen. Each country puts forward its agenda, which is accepted by 8 countries, 9 countries, that will be taken forward. There will be many other benefits of such gatherings. Coming out with a statement based on complete consensus is one important thing, because BRICS ka ek niyam hai ki koi bhi cheez ho to consensus se hona hai. वो एक ब्रिक्स का अपना अंदरूनी नियम है, इसलिए कॉन्सेंसस बनाना पड़ता है. आज के सिचुएशन में थोड़ा डिफिकल्ट है, वी अंडरस्टैंड, लाइक यू नो गाजा इश्यू इज देयर, फलस्तीन इश्यू इज देयर, दैट इज द कंटेंशियस इश्यू, देन देयर इज दिस इश्यू ऑफ यूक्रेन, दिस कंटेंशियस इश्यूज आर देयर. ऑल्दो इन ब्रिक्स यूक्रेन इज नॉट द रियल इश्यू, रियल इश्यू विल बी फलस्तीन, बट वी विल सी हाउ थिंग्स शेप अप, बट आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट वी विल कम आउट विद ए गुड स्टेटमेंट.
0: इसमें जो दो बहुत प्रमुख आवाजें हैं, एक भारत, एक चाइना, हमारा रिश्ता एक तरफ उस एलएसी के आर पार जो भारत और चीन के बीच नजर आता है, अनरिजॉल्व्ड मुद्दे जिसको लेकर लगातार बातें हो रही हैं, ये उम्मीद की गलवान के बाद जब पहली बार प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति बैठेंगे तो बहुत सारी गांठें वहां पर भी और सुलझेंगी. हमारा रिश्ता कैसा है सर, ब्रिक्स के भीतर सहयोग और ब्रिक्स से पार हम देखें तो टकराव?
1: फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्रिक्स कोई बायलेटरल फोरम नहीं है, सो बायलेटरल इश्यूज का ब्रिक्स में कोई स्थान नहीं है. देशों के बीच हो सकते हैं इश्यूज, हो सकते हैं हमारा चीन के बीच इश्यूज है, उनका प्लेटफॉर्म अलग है, एंड वी आर वेरी क्लियर, बोथ इंडिया एंड चाइना, वी बोथ कंट्रीज आर वेरी क्लियर दैट द इश्यूज बिटवीन अस विल प्योरली बी डेल्ट विद एट द बायलेटरल लेवल. ब्रिक्स उसका कोई फोरम नहीं है, ब्रिक्स के फोरम पर उन मुद्दों को उठाना भी नहीं होता है. ब्रिक्स टॉक्स अबाउट द लार्जर इश्यूज ऑफ ग्लोबल साउथ, इट्स द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ. रही बात बायलेटरल की, है हमारे दोनों देशों के बीच कुछ बॉर्डर को लेकर, ट्रेड को लेकर इश्यूज है, बट एट द सेम टाइम हम दोनों देशों के बीच एक स्ट्रांग ट्रेड रिलेशनशिप भी है. आई एम श्योर वी ऑल नो दैट इंडिया ट्रेड रिलेशनशिप विद चाइना इज $159 बिलियन. देयर ऑल्सो वी हैव एन इश्यू इन दिस $159 बिलियन ट्रेड. ट्रेड डेफिसिट इज मोर देन $100 बिलियन. आई मीन अवर एक्सपोर्ट्स एंड अवर इम्पोर्ट्स, ए ह्यूज मिसमैच एग्जिस्ट. सो वी हैव बीन ट्राइंग टू यू नो इंक्रीज अवर एक्सपोर्ट्स टू चाइना सो दैट देयर कैन बी सम ट्रेड बैलेंस, इन दैट चाइना हैज टू टेक ए फ्यू स्टेप्स, फ्यू मेजर्स. They have to ease their restrictions, trade restrictions. These are the things on which also a lot of negotiations are going on border. Of course, we have a border commission headed by our NSA on our side and foreign minister on their side. They keep talking, and decent talks happened just last week in Beijing. We are engaged with each other on those issues.
2: You were speaking about how BRICS is growing from 5 nations to 11 and almost 50 countries, we are told, waiting in the queue to join this grouping. Does a big group, does a bigger BRICS give heft to India, or does it dilute India's voice?
1: BRICS from a 3-country grouping in the beginning, Russia, India and China was the first group. From there it became 4, it became 5, today it became 11. Or probably 12, and it will. There are many other countries which are keen to join. But today, BRICS has emerged as a very important voice of the global south. BRICS ek aisa arrangement hai jisme European powers and America ka isme is group mein nahi hai. This group represents the non-Western world. And non-Western world ka most powerful voice ke roop mein aaj BRICS emerge kiya hai. Aur India ka kaafi important role is, you call it global south or you call it non-Western world, ye hai. And please remember, Prime Minister Modi's relations with leaders in global south are a very important factor in India's proactive role in BRICS. It will definitely help India, but it also will help, give a good place to the voice of global south.
2: P. Chidambaram ne jo bayan diya hai, uska uspe aapki tippani lenge. What benefits are we getting? That's what the former finance and home minister has said. I don't think the last 2 or 3 BRICS summits have resulted in tangible benefits or tangible results. Emerging from jo aapne kaha ki Bharat SEO ka part hai, G20 ka part hai, last year presidency Bharat ke paas thi, Quad ka part hai, itne sare groups ka part hone se benefit kya hai?
1: Aisa hai, inko Pradhan Mantri ji kehte naraaz phufa. Ab jab aap kar rahe the, when UPA hosted BRICS summit in 2012 here, did anybody say that? What is the benefit out of it? That time also, remember, we were a part of many other groupings. Look, that's why I said in the beginning, ab chalo dusre leadership mein ho raha hai, bada ho raha hai, usme India ek important role play raha hai, agar kisi ko thoda jalan ho raha hai, to main kuch nahi keh sakta. But to dismiss that these forums have no relevance is complete lack of understanding of the contemporary global reality. I'm sorry, it has come from a senior leader of the opposition party, somebody who served as India's foreign minister. At least they should understand that in the current geostrategic, geopolitical scenario, each of these groupings, for example, BRICS plus today, is a group of 11 countries. And remember, these are not small countries. I can tell you, between China, India and Indonesia, 3 countries, we are 45% of the world's population. And do you know that these are the 3 countries which are registering highest growth rates? 7.8 India, 5.7 Indonesia, 4.5 China. Fastest growing countries, big economies, on one platform, we are sitting together discussing about global issues. Half of, more than almost 60% of the world's population is a part of this BRICS arrangement. If somebody says it is, what is the use of it, I only pity them. इसलिए मैंने कहा ये नाराज फूफा एटीट्यूड है कोई दूसरा कर रहा है तो हम कहेंगे हाँ इससे क्या होने वाला है वेरी इंपॉर्टेंट अरेंजमेंट टुडे वी लुक फॉरवर्ड टू गुड आउटकम्स फ्रॉम दिस ब्रिक्स समिट हेट्रोपोलरिटी में कंट्रीज और ग्रुप ऑफ कंट्रीज के अलावा अदर फोर्सेस आएंगे दे विल बी मच मोर पावरफुल टुडे बिग टेक कंपनीज लाइक यू नो एंथ्रोपिक आर IBM आर Tesla, these companies, they are very powerful in the world today. There are certain individuals, hum bhi hamara right wing ecosystem mein kuch individuals ki baat kehte hai, phalana vyakti ne fund kiya phalana andolan ko, phalana vyakti hamara country ko destabilize karna chahta hai. Who is he? He is just an investor. I can invoke the name. We always see the name of George Soros. अरे जॉर्ज सोरोस तो इसको फंड कर रहा है, हमारे देश को अस्थिर करना चाहता है. जॉर्ज सोरोस कौन है? उनके पास कोई देश है क्या? उनके पास कोई आर्मी है क्या? इज जस्ट एन इन्वेस्टर. बट टुडे दैट इन्वेस्टर इज सो पावरफुल दैट कंट्रीज हैव टू बी केयरफुल वेरी अबाउट हिज एक्टिविटीज. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड हेटरोपोलैरिटी. एंड टुडे द टेक कंपनीज एस्पेशली बिग टेक एंड डीप टेक कंपनीज हैव एमर्ज्ड सो पावरफुल. आई गिव यू वन एग्जांपल हाउ पावरफुल दे आर जस्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड. गूगल ने जस्ट वन वीक एगो अनाउंस किया कि दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट टू

0: CSU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

को प्रेजेंटेड बाय हिंट, एक हिंट तो देते। पावर्ड बाय शिक्षा ओ अनुसंधान यूनिवर्सिटी, एम्पावरिंग स्टूडेंट्स फॉर अ ब्राइटर फ्यूचर।

0: न्यू सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.

0: CU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।